न दे ज्वन पकार भी दिलदारा में, न दे ज्वन पकार भी दियारा में, भी दिलदारा में, न दे ज्वन पकार, न दे ज्वन पकार, न दे ज्वन पकार, वही वही वही वही।

क्विज़मा गेम शो द फर्स्ट एसएमएस थे। अच्छा जी, सो फर्स्ट एसएमएस थे। वाजीवा कमाल खबर है मड़ा। तनु खबर को वाकई नेवी नेवी का सांची दगा रवान दे अनिसा खुरे कई उदा करेंगे नोर जी कम समग लिसनर्स दे समुर नेवी लिसनर्स दे चलो दा वेलकम खुश आमदे जी आई नो बखैर राले बखैर राले लेना मने ना सासु सासु डेरे से ता मने ना सासु सम का प्रोग्राम आओ रही पढ़ूं बिजल बंद है हमें सच के चीज़ देखा मौका भाई सासु डेरे से ता मने ना को जी बिल्कुल सासो कॉल सौदा करेंगे सासो मैसेजेस दाहम द प्रोग्राम इसे दी कॉलिंग नंबर 0309711899 बंदे गुरु सर कॉल करके सुखदेव द कम जन दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम देर ज्यादा मदने को दे दी आज बस कॉल रख ले आवा हां जी दाजनी खलक ले बनी अब गुम रहो रसी हां हां जी बे कुछ नबल में ऐसे जगह ले बैंड है हम तो मैसेज के डेरे से तो मन ना और चलो तो उसे अमीन उस्मानी वही चिदा रमजान में आज था ना जी ना गलत थे जवाब गलत थे हिने वे कॉल तब तो जरूर मुसरा कॉल का उनके सोख दे अब तो चलता ना दिया सलाम वालेकुम

बिल्कुल सर जनाब। तो टीम जेर वालों तो डाले चाहे मीनर राग ले जगह प्रोग्राम पेन दिया खोर की मैसेज गई मेरे से तो मन ना दादी 1863 गिफ्ट देखा 1200 डेरा मन ना दे मैसेज कवर हो खुद कॉल्स कवर हो सासु तो टोल डेरा मन ना कोमड़ा एनीवे जनाब चाकालो कोड़ा लेरे से तमन्ना छाए सिमेस कोड़ा लगे हमारे रमन चाकाले सिमेस में शामिल लगा गया ना माफी बखना उस सिमेस में ना दाखल कुछ अच्छी दागा प्रोग्राम समग्र पूरा ये वक्त घंटा खामोशी से रखा वाव रेडले पतलोत लोग ये वक्त खबर अखपल जो अंदर डिज़ ख्याल साथे स्पेशली दागा खाल को हमारे डिज़ ख्याल साथे